उठा पुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत। सकल समग्री तुमरे सूत्र।

0: कोई नहीं ऐसे पास हो तो
1: एक मिनट
0: समाप्ति तो बाद सारे सिंह ने
2: कोई काला चिट्टा कोई
0: हां सारे जन केस जी
2: हरन भी जो अच्छा हरन ने
0: सारे हो गए जी
2: दूसरा वे लेके करनी है भाई दूसरा
0: एक देखो समझे नहीं कर
2: हरमन ने
0: ये है तो एको जी सारे एक
3: ਕਹਿੰਦੇ
1: ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਓ
3: ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ

गौड़ी सुखमनि महला पंजवा सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद वाहगुरु ए नमः जुगादगुरु ए नमः सतगुरु ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पाव कल कलि तन माहि मिटाव सिमरा जा शुभ संभरी कै नाम जपता गण तनिक वेद पुराण सिमर सुधाखिर कीने राम नाम एक आखिर

प्रभु का सिमरन कर बिना बस है, प्रभु का समन दूस जमन आसा है, प्रभु का समन काल पर हर है, प्रभु का समन दुश्मन टर है, प्रभु सिमरत कह बिगन ना लाग है, प्रभु का सिमरन आनंद में जाग है, प्रभु का सिमरन पावना व्याप है, प्रभु का समन दुख ना संताप है, प्रभु का समन साध का संग सर्वन ध्यान कह रंग, प्रभु का सिमरन रिद सिद्ध नाम निध, प्रभु का समन ज्ञान ध्यान तद्बुद, प्रभु का सिमरन जावता पूजा, प्रभु का सिमरन बिंसा दूजा, प्रभु का सिमरन तीर्थ स्नान, प्रभु का सिमरन दरगह मान, प्रभु का सिमरन हुए सो पराय, प्रभु का सिमरन सो पर फराय, श्री सिमर जनाब सिमराय, नानक तह कला को पाए, प्रभु का सिमरन सरति ऊंचा, प्रभु का सिमरन उदरे ऊंचा, प्रभु का सिमरन तृष्णा भूजा, प्रभु का सिमरन साहब कैसे सो जाए, प्रभु का सिमरन नाह जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्णासा, प्रभु का सिमरन मन की मर जाए, अमृत ना अमृत माहि समाए, प्रभु जी बस है सार ग्रसना, नानक जान का दासन दसना, प्रभु को सिमर है सी तन बंति, प्रभु को सिमर है सी पात बंति, प्रभु को सिमर है सी जन प्रदान, प्रभु को सिमर है सी पुरुष प्रदान, प्रभु को सिमर है सी भी महता जी, प्रभु को सिमर सी सब गिराजी, प्रभु को सिमर सी सुखवासी, प्रभु को सिमर सदावनासी, सिमरन तीरा के जना दया नान जन के मंगर वादा, प्रभु सिमर शिव पर पुकारि, प्रभु सिमर तन सद बलहारि, प्रभु सिमर से मुख सुहावि, प्रभु सिमर तन सुख विहावे, प्रभु सिमर तन आत्म जीता, प्रभु सिमर तन अमर जीता, प्रभु के सिमर तन आनंद के निरे, प्रभु सिमर बस हर निरे, संत कृपा ते आनंद जाग, नानक सिमरन पूरे पाग, प्रभु सिमर कार्य पूरे, प्रभु का सिमरन कब होना चूरे, प्रभु का सिमरन हर गुण बानी, प्रभु का सिमरन सहज समानी, प्रभु का सिमरन निचरासन, प्रभु का सिमरन कमर वगासन, प्रभु का सिमरन अनहद जन कायर, सुप्रभु सिमरन कांतना पैर, सिमर है सी जन जन को प्रमाया, नानक तिन जन सरणी पाया, हर सिमरन कर पगल प्रगटाय, हर सिमरन वेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चह कुंड जाति, हर सिमरन तार सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकार, हर सिमरन महा निरंकार, कर कृपा जह बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तन पाया, श्लोक दीन दर्द दुख भंजन काट करनाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक प्रसाद अष्टपदी, जह मात पिता सुतमीत न पाई, मानु है नाम तेरा संग सहाय, जह महा पाया दू जम दरा, तह कि नाम संग तेरा चल, जह मुस्कर हुआ तो पारी, हर पुनः फिर माहे उदारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तर, हर को नाम कूड़ पाप पर हर, गुरु नाम जप हमार मेरे, नानक पाव सुख निर सक सृष्ट पर, जा दुखी हर को नाम जप तो सुखी अला, क्रोधी बंधन पर,

जह पंथ तिरकु न संजानु हर कनवत हर कुशानु जह महापयाम तवत बहुकाम तह हर के नाम की तुम उपरश्याम जह त्रिखम तुजा करख तह नानक हर हर अमृत परख उपक्त जनक वर्तनाम संत जनक मन विश्राम हर कन

साग सैन मुखा पियाउ बैठ कर दैन। इह निर्गुण अगुण कृष्ण बुझ जाय बक्षली हो तो नानक सिख जाय। जह प्रसाद तारू पर सुख बसा सतप्राद मनता संग हस जो प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदायु पावन पाव कमला। जो प्रसाद पू गह सब रसा सग सामग्री संग साथ वसा दीने हस्त पाव करण नीत।

करतूत पशु के मानस जात लोग बिचारा करतन रात बाहर पीखा अंतर मल माया शब स्नान कह कर छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापाय रूप समान अंतर गण बाहर तन स्वाह कल पात्र कैसे तरह था जग अंतर बसा प्रभाव नानक जन सहज समाध

कोई न जाना तुम्हारा दूजे दूजा भगवंत सकल समागरी तुम्हारा है सूत्र धारी तुम देव स्वागत कर तुम्हारी गात में तुम ही जाने नानक दास तक कुरबानी श्लोक दीन हर प्रभ छूट करा गहन स्वय नानक कहु न सी जय बिन नावन पात जाय अष्टपदी दस बस पूरे पाछा पावे एक बस कान भी खोट को आवे एक बिना दी दस भी हेर लिए ता मुड़ा कहो कहा करे जे ठाकुर सोना ही चारा ताकु की जे सद नमस्कार जा कमान लागा प्रम बीठा सर्व सुख ता हुमन उठा जे जन अपना हुकुमन आया सर्व थोकना।

काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्तिया सब वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या त्रुह मुह मान मिथ्या सुपुर कर दुपमान सथिर भगत साध की शरण नानक जाप जब जीव हर के चन मिथ्या श्रवण पन दास सुन है मिथ्या हस्त पर दर्व कव हिर है मिथ्या नेत्र बीर्थ पार त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चन पर विकार कत मिथ्या मन पर लू रूपा मिथ्या तन पर उपकार मिथ्या बास रित विकार बेन बुजे मिथ्या साब भय सफल देह नानक हर नाम लय वृत्ति सागत की आर जस आज बिना कह हो सूचा वृथ ना बिना तन अंध मुखाव ताक दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाय मेघ बिन जो कीर्ति जाय गोवत भजन बिन वृथ सब काम जो कृपन किन रारथ दाम तन तन तीय जान जिह काट बस हर नाम नानक तक बर बल जब रह त्यवर कैश्यवर कुमावत।

सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप आप करत न बेरा कह दूर जनाव के हो जाव नियरा उपाय उससे आन सकल दे रहे तो सब कह जाने आ तुम की रह तो जह पाव दस ले लड़ लाए थान थनांतर रहे असमाय सो सेवक जह कृपा करी नेम कह नेम जब नान करी स्लो काम करो दर लो मोह व्यंस जान हुए उनान पर अवसरण आय गति कर प्रसाद गुरु दिवस पदी जे प्रसाद शक्ति हमृत कहे दुष्ट ठाकुर कर रख मन वाहे जे प्रसाद सुगंध तो तन लावे दुष्को समृत परम गत पाए वह जे प्रसाद बस सुख मंदर तुस हित आय सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख वसनाट पैर सिमरत दुस रसना जे प्रसाद रंग राह भोग नाम सदा दुआई आदि अम जोग जे प्रसाद पाठ पुटंबर हंडावे तिसे त्या कद डुबावे जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मनाट पैर ताका जह का भी जय जे प्रसाद तुझे सब कुमार नमक ताको जस रसन मुखाना

जय प्रसाद सकल क्षेत्र ठाकुर शरण पारु ठाकुर प्रभु ताक जय प्रसाद तुझको ना पाहु जय मनसा सरसम प्रभु जय जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताक भगत करी जय प्रसाद भूखन पहरी जमा ते स्मरत कुमार सुख जय जय प्रसाद सब हस्ता सवार मंद प्रभु को काबू होना विसारी जय प्रसाद भाग मिलक तना राख प्रभु अपने मन आजंती मन बनत बनाई उठ बैठ सत सहित आई तो सहित

ससाजतारि निः प्रसादरसन्तरूप सौप्रवश्यं रहो सदानुज प्रसादिकिजात सौप्रवश्यं सदनराज प्रसादिपात्रः कृपसानानुजासुकः जयप्रसाद स्वनेः कर्णनाद जय प्रसाद विकविस्मा जय प्रसाद बोलामृतरसन जय प्रसाद सुखसह जय वसना जय प्रसाद हस्तकर चलह जय प्रसाद सम्पूर्ण फलह जय प्रसाद परम गत पावह जय प्रसाद सुख सहज समावह सप्रभु त्याग कदलाग गुरु प्रसाद हनुमान जाग जय प्रसाद तुम प्रगट संसार दह प्रको मुकुर नमन अवसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन गुड़ तू ताको जब जय प्रसाद तिर कार्य पूरे तुसा जन्म सदा

ब्रह्म ज्ञान सकल गिरी नयात्मरा ब्रह्म ज्ञान चीना ब्रह्म ज्ञान की सब उपरमाया ब्रह्म ज्ञान दिखाय बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञान सदा समदर्श ब्रह्म ज्ञान की दृष्टा अमृत बरस ब्रह्म ज्ञान बंधन मुक्त ब्रह्म ज्ञान के नवल जुगता ब्रह्म ज्ञान का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञान एक उपरा ब्रह्म ज्ञान का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञान का गरीब समाह ब्रह्म ज्ञान पर उपकार ब्रह्म ज्ञान का नाश तंदा ब्रह्म ज्ञान देता उद्बंध ब्रह्म ज्ञान का हुए सोफला ब्रह्म ज्ञान सोफल उपला ब्रह्म ज्ञान संग सगल उधार नान ब्रह्म ज्ञान जब सगल संसार ब्रह्म ज्ञान का एक रंग ब्रह्म ज्ञान का वास ब्रह्म संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परिवार ब्रह्म ज्ञान सदा साधु जागृत ब्रह्म ज्ञान अहम बुद्ध त्याग ब्रह्म ज्ञान का कार ब्रह्म ज्ञान का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कर सदानंद ब्रह्म ज्ञान सुख सैन वासनान ब्रह्म ज्ञान का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का वियता ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुए अचंत ब्रह्म ज्ञान का निर्मल मंद ब्रह्म ज्ञान जो करा प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बड़ प्रता ब्रह्म ज्ञान का तरफ बड़ भाग्य पाया ब्रह्म ज्ञान का बाल बल जाइए ब्रह्म ज्ञान का जय महेश्वर नान ब्रह्म ज्ञान परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञान का सगल मान वाह ब्रह्म ज्ञान का कौन जाना पेद ब्रह्म ज्ञान का सदा दिवस ब्रह्म ज्ञान का कसे आना जाता आखिर ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मत कान बखाना है ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान जाना ब्रह्म ज्ञान का अंतना पैर नान ब्रह्म ज्ञान का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञान सा जीवन मरता ब्रह्म ज्ञान मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञान पूर्ण पुरुष बताता ब्रह्म ज्ञान अनाथ कनाथ ब्रह्म ज्ञान का सब उपराध ब्रह्म ज्ञान का सकलाकार ब्रह्म ज्ञान अनुरंकार ब्रह्म ज्ञान की शोभा ब्रह्म ज्ञान बनि नान ब्रह्म ज्ञान सर्व का तन श्लोक उर तार जवंतर नाम सरम अभिख भगवान निम निम ठाक नमस्कार नान गुह अपर सकल नेह तारास्पदी मिथ्या नह रसन परस मन प्रीत निरंजन दर्श उपार त्रिय रूप न भी खंड दर्शाद गृहर संत संहित कर्ण ना सुन का पुनिंदा सत जन आस्कमंद गुरु प्रसाद विखे अपर हर मन वाहन मंद टर इंद्री जित पंच दुख ते रहत नान कूट मध्य कुसा परस वैष्णो सो जो वैष्णो सो जो सुपर सो प्रसाद न विष्णु कुमार तो फिर बिंद कर्म कर दो कर्म वैष्णु का निर्मल धर्म का फल की इच्छा नहीं वैश्य केवल भगत कीर्तन संग्रह चमन तन अंतर समरम को पार सब प्रोत कृपाल दृढ़ अवरण नानक वैष्णो परम गत पाव भगवती भगवंत भगत का रंग सकल त्याग दोष का संगवंत विनसा सकल परम कर पूजा सकल पार वंश संग पाप मन को वैद भगवती कुमार तू तुम वाय भगवंत की टहर करा नित नीत मान तान अर्प विसर प्रीत मान तान अर्प विसन प्रीत हर के चन हृदय सब नान कह भगवती भगवंत का पाव सो पंडित जो मन प्रभु राम नाम आत्मा सोदा राम नाम सार रास जीव सु पंडित का उपदेश जाग जीव हर की कथा हृदय सब सु पंडित फिर जो ना वेद पुराण समर्थ पूजा मूल सुख मैं जाना फूल चाह वरण को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चाह वरण नाम जप को नाम जो जो जप संग पाव जन को कर कृपा अंतर और तारा पास प्रीत मुगत पात्र का उतारा सर्व रूप आयोग नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम का जुगत के तना पाई धर्म नानक मेरा जिस लिखा दुर्कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम दहन दुर्गा दाह संतरण उपाय दिन पाय सदा निकट निकट हर जान सो दाह दर्घ प्रवान अपने दाह को आप कृपा करे तह दाह को सब सोजी परा सगल संग आत्म उदास ऐसे युग नानक रामदास प्रभु ज्ञागा आत्म हितावे जीवन मुख सुख कहावे तस हरक तह सुख सदानंद तह वियोग तह स्वर्ण तह शिव स्मरट तस अमृत तह विखाट तस मान तस अभिमान

के रंग। जय श्री मात दी दह प्रकाश पार ब्रह्म कृत्य बना सदा सदा सदा दयालु सिम सिम नान पैन श्लोक उस्तत करह निक जनांतन पारा वार नान प्रजन प्रवर जीव वेदन प्रकाश अष्टपदी कई कोट हो पुजारी कई कोट आचार व्यावहारी कई कोट पैदूर्थवासी कई कोट बान प्रमादास कई कोट वेद के स्रोते कई कोट विस्रोते कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट का विचार कई कोट नाव तन नाव ते अवनान करते कंतन पाव है कई कोट पय अभिमान कई कोट आंध अज्ञान कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेगा आत्म निकोर कई कोट पर तर्प कव रह कई कोट पर दूख न करह कई कोट माया श्रम है कई कोट प्रदेश प्रमाह जेत जेत लावह तेत तेत लगना नान करते कि जान करत रजन कई कोट सेत जति जोगी कई कोट राज रह भोगी कई कोट पंखी सर्व पाय कई कोट पात्र बिरखने बजाय कई कोट पवन पाणी व्यासंद्र कई कोट देश भूमंडल कई कोट सर सूर्न ख्यातर कई कोट देवदानंदर सर छत्र सग समग्री अपना सूत उतार नानक जय जय पावे तेस तेह नहतार कई कोट राज सतामस सातक कई कोट वेद प्राग समृत अरसासत कई कोट की रत्न सुमृत कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चेर जीवे कई कोट गिरिमीर स्वर्ण थिवे कई कोट जाख किन्नर प्रसाद कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाच शब्द निरा सबूत दूर नानका परिपत रहे अपार पूर कई कोट पाताल के वास कई कोट नरक स्वर्ग निवास कई कोट जन्म है जीव हमर है कई कोट बाजो निर है कई कोट बैठ का है कई कोट काल हक पा है कई कोट कीर्तन मंद कई कोट माया मह चिंत जह जा पाणा दह नारा क्रांत सब प्राप्त हाथी

सा समाज नानक परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभि कह दूसर न कोई नानक बलहार न जल थल महिल सोयष्टपदी कर्म क्रमण करना जोग जो दिख पावे सोई होग किन मह था अपना रंत नहीं किस पर वार हुक्म तार तार रहावे हुक्म उपजा हुक्म समावे हुक्म उच नीच व्यवहार हुक्म अंतरंग प्रकार कर कर

जिन प्रभु जाता सो सुभवंत सकल संसार उदरातन मंत प्राव की सेवक सकल दान प्रभु से गुरु सना पिमी लय कृपाल गुरु का सब जप पाए हर मुख सिवा सो लागा जिसनु कृपा कर हम भाग नाम जपत पाव बिसराव नानक तीन पुरख कौ तुम कर मान जो के कर सुप्रभु करंग सदा सदा बस हर संग सहज सुभाय हुआ सुभ करण आरोप छाड़ा सु प्रभु का किया जन वीर गण जय सदा सदा जेहते उजते हमारे समाये हुए सुख न दान बने आया उस पाव दिनो मा नानु प्रभु जन एक जन श्लोक सर्व कला पार गुरु प्रभु अर्थ जनन हर जाकर सिमरन उदरिया नान पर हर अष्टपद कुटी कांडन हर गोपाल सर्व जी आप प्रत पाल सगल की चिंता जो मन वाह देहते व्यर्था कोई नाही हरि मन मेरे सदा हर जा पे अवनाशी प्रभ आप आप अपनी किया कश न हो जी सब प्राण रोजा कोई दिख बेन ना तेरा कुछ काम का तनान जा पी एक हर नाम रूपवंत हो ना वो है प्रभु जो सरल कर सो है तनवंता हुई क्या को कर वै जहाँ साहब के हृदय का दिया तर व्यात सूरा जे को कहा प्रभु कला बना कहता जे को हो वह दातार देख दिन हर जाना का वार जिस गुरु प्रसाद उठा हर रोग नाम सो जन सदा रोग जो मंदिर का था मन थमन त्यों गुरु का शब्द मन हस्त मन

सहज सुभाई। तब शिव सकत कह गदठाई, जब आप अपन जो तारा तब कवन निडर कवन का चला, तब कवन निडर कवन का तो डर है, आपन चलत आप करने आर नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुखा अपनासन तह जनवरन कह कह अविनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम कि त्रास, कह के सोए जब अब कतिया गुजर प्रभि का।

Tuta. Nehendranjana Naranka Nirvana Tehkan Kaman Kanavman Jasrupio Jagdisa. Tehashara Shirdar Lagd Kaukisa Jahajod Srupi Jod Sangstamara Tehkasa Puha Kaundrauta Karnakraun Karne Harna Kartikana Samarja Vapniso Vapan Sangbanai. Tau kaun maya ba mitra sut pai jan sarv kalaya pah parvin na bhed dev kah ko ji na jab apna pura pur tar ta sakna sakan kah vichar ne apan uch apan ap nira tah kaun thakur kaun kahi ajira bismana bismare bismana gunan kapne ka jan ho av jah ashalya shere pet samaya uh kah vya maya आवस को आप आदि से देह गुण करा है प्रभु से जह ई कह ई के एक भगवान तात कौन अचिंत कह का चिंता यह अपन आप पति आरत कौन कथा कौन सुनने हर वह व्यंदूज देव जनान का आवस को आप पाहु चज आप रच ऊपर पंच कार देह गुण में किन विस्तार पाप पूर्णता पै कह अद गुण

वर्णन अमांड मन पवनास मन मन प्रकाश गुण गण पुरनाम जल तन्म दाम अनंग आसन पांग उपमा पार गतम उदार जल तन मंड दिस पंड जल तन मंत दिस व्यंत अनुभव नाथ तर तर तरा सु जानुभव एक सदा ओंकार आग पसनी नाग कलखंड ख्याल गुरबर काल कर कर प्रणा सु तरण मन सत गात आज जना बात अनचांच गात निरंज बागन टुट प्रणार अनरंडा पार टीठ कर मत टीठ कर मन आन ब्रह्म आनंद दाता महादर पूर मना शंत व प्रसाद करुणालय हर काले कलखंड नै मैं मंडन जगतेश्वर है परमेश्वर है।

दुर्योधन ही प्रपायो काहू लै पा तू तरियो से काहू लै लिंग दिल पकायो काहू लगे उर्वाची दिशा में काहू विशाख सीजन वायो कोब तान कूत तै पास कुमर तान पूजन पायो कूर करिया और जो सब ही जाग श्री भगवान का भेद न पायो कोब तान कूत तै पास कुमर तान पूजन पायो कूर करिया और जो सब ही जाग श्री भगवान भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पाशी दसवीं कवि बात बेनती जा पाई हमारी गुरुआ दृशा पूर्ण उचित कृष्ण चरणा मन रहे हमारा अपना जान पारा हमरे दुष्ट सभी तुम का भगवा पा दे मन विकासी मूल गुरुवारा से उसे कृतारा मोर संग कर दी करें सब बैर को वास करें पूर्ण हो हमारी आसा तो पन की रे प्यासा तुम है शाड़ को ध्यान जो जहाँ तुम ते पाओ से उस तुम्हारे तारे तन सतन मारे मारे है आप आते मुझे बरे मरण काल का त्राण हो रहे हो जुसदा हमारे पश्चा रिया तुझ करियो रसा राख लो राख ना रसा संसार प्यारे दीन बंधु तुम कहता तमो परी चतुर्दश कंता काल पै ब्रह्मा मुतरा काल पै शिव जुग अवतरा काल पै कर का सदर काल का गया तमाशा जवन काल जो शिव की यु बेदरा ब्रह्मा ज्योति यु जवन काल सो लोक सुबारा नमस्कार तय हमारा जवन काल सो जगत बनायो देव दर्शन जाय वादम ते को तारा सोई को समझो हमारा नमस्कार तुझी को हमारी सल पर जागने सवारी शिवकन को सागुन दियो सदरन को परमा कियो घाट घाट के अंतर की जानत भले बरे की पीर पसान की टिते गुंजरा सोला सब पर कृपा फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए सारन के सुखी एक पीर पजाना है गड़गड़ के पर उठ के जाना है जब कर करा करता रहा प्रजा तरता दे पा राजा ब्याह कर तुम का मुँह तुम मैं मिल दे तरसा हूँ

दया कृपा संतोख सूत जंत गंडी सतवटियो जनयो जी का इत पांडे कातम नायो तुट न मल लगे नायो जलय न जाए तन सुमर स्नान का जुगल चले पाए चौकड़ मुलर नाया बै चौके पाया सका।

सूरमा वड जोदा बहु पर उपकारी सो कहो टल गुर सेविय एहन ससहज सुपाए दर्शन पसिय गुरु कै जन्म मरण दुख जा हो वैसपति।

जो प्रभ भागा सब थिया वर्ण करण जाए जन नानक जीवै नाम लै हर देव हो सहज सुभाए श्री राग महला तीजा कर पहला जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोए गुरुअंकार कमावणी सच घट प्रगट होए अंदर जिसका सज वसै सत्य सत्य सोए

आए से प्रमाण हुए। जिन गुर मिलिया सुभाए सती सती रतिया दरगे बैसम जाए करते अथवड़ाइया पूर्व लिखिया पाए सतकृता सकरण अर्थ सह सच टेक सचो सच बखाणी सतु बुद्ध बेक सुनिरंतर रव रया जब नाम दीव एक श्री राम महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजी मंत्र लाए प्यार सतगुर दत्ता जी का सरस्वती उदार सतगुर भजन कमावणे सदा सचा ए विचार बिन साधु संगत रत्या मम सुबिचार मेरे साजन हर कर नाम समार साधु संगत मन वसे गुरु विकारा गुर समरात अपार गुर भागी दर्शन हुई गुर गुच निर्मला गुर देव डोरण कोई गुर करता गुर करुणार गुरमुख सची सोई गुरते

मन वसै हुक्म सास माओ हुकु न जाने बपड़ी भूले फिरे गावार मन हर कर्म कुमाव दे नित नित होए खुआर अंतर सांतनाया भी ना सच लगा प्यार गुरमुखिया मोसोहनी गुर कै हित प्यार सच्ची भगत सच रते दस सचै सत्यार आए से परवान है सब कुल का करी उधार सब नदरी कर्म कुमाव दे नदरी बाहर ना कोई जैसी नजर कर देखा सच्चा तैसा ही तो होए नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याइया मन मुख बूझ ना पाए गुरमुख सदा मुख उजले हर वसिया मन आए सहजे ही सुख पाइया सहजे रह समाए भाई रे दसन दासा होए गुर की सेवा गुर भक्त है वर लापाए कोई रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए सदा फिर निचल पाइया ना मरा ना जाए शब्द मिली ना विछुड़ै फिर कैंक समाए हर निर्मलया तू जला बिन गुर पाया न जाए पार पड़ै ना बूझई भेखी भरम भुलाए गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस माए माया मोह चुकाया गुरमती सह सुभाए बिन शब्दा जग दुखिया फिरै मन मुखा नो गई खाए सबदे नाम ते आइया सबदे सा समाए माया भूले सिद्ध फिरे समाद ना लगै सुभाए तीने लोक व्यप्त है अधिक रही लपटाए बिन गुरमुक्त ना पाइया ना दुबदा माया जाए माया किसनु आखिए क्या माया कर्म कमाए दुख सुख इहो जीव बद है हो मैं कर्म कमाए बिन शब्द भरम ना चूकई ना विचो हो मैं जाए बिन प्रीति भक्त ना होवे बिन शब्द थाए ना पाए शब्द हो मैं मारिया माया का भ्रम जाए नाम पदार्थ पाइया गुरमु सह सुभाए बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भक्त ना होए भगत वसल हर मन वसिया सहज मिलया प्रभ सोए नानक शब्द हर सा लाहिया धर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा माया मोह मेरा प्रभ कीना आपे भरम भुलाए मानव कर्म करे नहीं पूजा बिरथा जन्म गवाए गुरबाणी जग महचानन कर्म सह मन आए मन रे नाम जपो सुख होए गुरपुरा सा लाहिया सहज मिला प्रभ सोई रहाओ भरम गया पौ भाग्या हर चरनी चित लाए गुरमु शब्द कमाइया हर वसै मन आए धर्म हैल सस माहिया जम काल न सका खाए नामा चीपा कबीर जुलाहा पूरे गुरते गत पाई ब्रह्म के बेते शब्द पछाड़े हों मैं जात गवाई सुर नर तिन की बारी गावै कोई ना मेटै भाई दैत पुत कर्म धर्म के संजम ना पड़ै दूजा भाव न जाने सतगुर भेटिया निर्मल होवा अंध नाम खाना एको पड़ा एको नाम पूजै दूजा वर ना जाने खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर भरम भुलाए सतगुर सेवी ता गत रित पावै हर जीव मन वसाए सच्ची बाणी सिउ चित लागा आवन जान रहाए पंडित पड़ पड़ वाद वखाणै बिन गुर भरम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्दा मुक्त न पाए जा नाओ चेता ता गत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत्संगत मह नाम हर उपजै जा सतगुर मिला सुभाए मन तन अर्पिया गवाई चला सतगुर पाए सत बलहारी गुर अपने विटो जे हर सेती चित लाए सो ब्राह्मण ब्राह्मण जो बिंदै हर सेती रंग राता प्रभ निकट वसै सबना घटे अंतर गुरमुख विर लै जाता नानक नाम लै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजे नू सब लोच दी बिन गुर पाया न जाए फट फट पंडित जोत की थके भेखी भरम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करी र जाए भाई रे गुरबिन सहज न होए शब्द ही ते सहज उपजै हर पाया सा सोए रहाओ सहजे गाव्या थाए पवै बिन सहजे कथनी बाद सहजे ही भगत उपजै सहज फेर बरार बराग सहजे ही ते सुख सात होए बिन सहजे जीवन बाद सह सलाही सदा सदा सह समाद लगाए सहजे ही गुण उचरै भगत करे लिवलाए सबदे ही हर मानो सह रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया सा सरनाई पाए सहजे हर नाम मन वसया सच्ची कार कमाए सेवट भागी जनी पाया सहज रहे समाए माया विच सहज न उपजै माया दूजा पाए मानव कर्म कमावने होमै जलै जलाए जमन मरण न चूके फेफरिया वै जाए त्रह गुना सहज न पाइया त्रै गुण भरम भुलाए पढ़िया गुणिये क्या कछिया जा मुंडोह कुथा जाए चौथे पद मैं सहज है गुरमुख पल्ला पाए
ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸੋਜੀ ਹੋਏ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾਲਾ ਹਿਆ, ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ ਭੁੱਲਿਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਭ ਅੰਧ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੋਜੀ ਪਈ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਸਹਿਜੇ ਅਦਿਸ਼ਟ ਪਛਾਣੀਐ ਨਿਰਭਉ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾਇਕ ਦਾਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਨਹਾਰ, ਪੂਰਾ ਸਭ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਦਾਨਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਾ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਿ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ, ਅੰਧ ਲਾਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਖੁੱਟ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਦੀਏ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਫੇਰ ਨਾ ਪਵੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਸੋਜੀ ਹੋਈ ਹਰ ਨਾਮੈ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸਦ ਨਵਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਹੈ ਮਨ ਆਏ ਰਹਾਓ, ਹਰ ਜਿਉ ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸਰਨਾਈ, ਜੋ ਰਾਖੈ ਤੋ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵ ਜਲ ਤਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਵ ਨਾ ਉਪਾਈਐ ਗੁਰਮਤੀ ਸਭ ਸੁਹਾਈ, ਆਪੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ ਸਹਿਜੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਨਾ ਮਨ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭਾਵੈ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਇਆ, ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਫਿਰ ਆਵੈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗ ਰਾਖਾਇ, ਨਾਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦ ਨਿਰਮਲ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਸੁਮਾਤੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲੈ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣੀ, ਇੱਕੋ ਸੇਵਨ ਏਕ ਰਾਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਸੱਚ ਸਿਉ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਿਲਾਏ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਕਨਾ ਸੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਗਾਏ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਨਾਨ ਸਭ ਸਮਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਾਗੋ ਸੇਵਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲਾ ਭਏ ਪਵਿੱਤ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਭੇਟਿਆ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਬੈਸਣਾ ਸੱਚ ਨਾ ਮਨ ਧੀਰ, ਮਨ ਰੇ

सुन के सब भन लिखती कुलकारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिनी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गया लीने हर जसो दीने जो ना धारा नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेट हरी काम क्रोध लोभ मारिया कथ न जाए कथ स्वामी सदका जाए नानक वारिया सी राग महला चौथा वनजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोई जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोय सो हर सदा ध्याइया तिस बिन अवर न कोई जो मोह माया चित लाए दे से सोर चले दुख रोए जा नानक नाम ध्याया हर अंस हाई होए मैं हर बिन अवर न कोई हर गुरसरनाई पाइया वनजारिया मित्रावट भाव प्राप्त होए रहाओ संत जना बिन भागिया हर किने न पाया नाओ विच हम मैं करम कुमाम दियो वेसुआ पुत ने नाओ पिता जात न होइया गुर तुठा करे पसावट भाई गुर पाया हर अहमस लगा भाओ जा नानक ब्रह्म

हार जाल नेत हम जल के मीने जन नानक जाल मिन वरिया जियो बाज महला चौथा हार जन संत मिलो मेरे पाई मेरा हर प्रभु दसह मैं भुख लगाई मेरे सरदा पूर जग जीवंदा ते मेरा हर दर्शन मन पीजा जियो मेल सतसंग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरा मन पाणी हर हर अमृत हर मन पावे मेरे सतगुर अमृत पीजा जियो बड़ पागी हर संगत पावे पागीहीन भ्रम चोटा खावे बिन पागा सत संग न लभे बिन संगत मैल भरी जय जियो मैं आई मिलो जग जीवन प्यारी हर हर नाम दया

प्रसादी जिन अंतर पाया सो अंतर बाहर सो हिता जियो चियम चियम वर्ष अमृत तारा मन पीवा सुन शब्द विचार आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर की लाजियो जन्म जन्म का बिछुड़िया मेरिया साध कृपा ते सुखा हरिया समत पाय नाम ती आय गुरमुख हो मेला जियो जाल तरंग जो जल है सुमाया त्यों ज्योति संजोत मेलाया कहना अनुक्रम कटी केवाड़ा वहन होइया जावला जियो माज महला पंजवा तिस गुरबाणी जन तू सुनिया तिस बलहारी जन रसना पणिया वार वार जाई तिस बिट हों जो मान तन तो दिया राधी जियो तिस चरण पखाली जो तेरा मार्ग चाल नैन निहाली तिस पुरख दयाल मान दीवा तिस अपने साजन जिन गुर मिल सो प्रभलादि जियो सि बिट पागी जन तू जाणी सब के मध्य अलिप्त निर्वाणी साध कसंग उन पव जल तरिया सकल दूत उन साधि जियो तिन की शरण परिया मन मेरा मान तान ताज अंबूत अंधेरा नाम दान दी जय नानक पाओ तुस प्रभग में अगत ही जियो मैं जुम हला पंजव तू पीठ साख तेरी फूली तू सुखम हवास थोरी तू जाल निरत तू फेन बुध बुध तुद बिन अवर न पालिया जियो तू सूत मणि पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद अंत प्रभ सो यवन कोई दिखा लिया जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण रसिया रंग राता अपने कर्तव्यापी जान है आपी तुद संभालिया जियो तू ठाकुर सेवक न्यापी तू गोपत प्रगट प्रभापी नानक दास सदा गुण गावा एक पूरी नदर निहालिया जियो

कर करे जिन हार जस लिखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हो बाल तिन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सा संखेन माहि उधारी।

सुखपाई है, अस्थाव पाओ बिनस हर हर त्याई है, जिन से व्या सुपार ग्रामी कार सगड़ी थिये, जियो आय पया तीर शरण आय, जो पावे तुम कह मिलाई, कर कृपा प्रभक्ति लाव हो सच नानक अमृत पिए, जियो माज महला पंजवा पई कृपा गोविंद गोसाई, वेग वर्ष सबने थाई, दीन दयाल सदा कृपा ला ठांड पाई करतारी, जियो अपने जी जंत प्रत पारी, जो बारिक माता संहारी, दुख भंजन सुख सागर स्वामी दीत सकल आहारी, जियो जाल थल पूरा मेहरबाना, सतबर हार जाइए गुरबाना, रैन दिन सहत सदा त्याई, जे खेन मैं सगले उधारी, जियो राख दिए सगले प्रव्यापी, उतर गए सब सुख संतापी, नाम जपत मंदन हरि आवल, प्रभु नानक नदर निहारी, जियो माज महला पंजवा, जिथे नाम जपिए प्रप्यारी, से आस थल सोयन चाव पार, जिथे नाम न जपिए मेरे गोये दासी, नगर उजाड़ी, जियो हर रुखी रोटी खाए सुमाली, हर अंतर बाह नदर निहारी, खाई खाई करी बात फैली, जान विसु की वाड़ी, जियो संता सी तिरंग न लाय, सग संवे कर्म कमाई, दुलाब देह कोई अज्ञानी, जड़ अपने आप उपाड़ी, जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावे, राख शर्म असाड़ी, जियो माज महला पंजवा, चरण ठाकुर के हृदय समाणी, कर गृह साहब दूर पायान, शांत सुख सहज तुन उपजी, साधु संग निवासा, जियो लागी प्रीत न टूटे मूले, हर अंतर बाहर रहया पार पूरी, सिमर सिमर सिमर गुण गावा, काट जंग फासा, जियो अमृत बरख है अनहद बाणी, मंत्र यंत्र शांत समाणी, त्रिवतर त्रिवत अगाई रहे जन तीर, सतगुर किया दिलासा, जियो जिसका साथ ते फल पाया, कर कृपा प्रभु संग मिलाया, आवण जान रहे बुढ़पागी, नानक पूर्णासा, जियो माज महला पंजवा, मीह पया परमेश्वर पाया, जी जन सा सुखी बसाया, गया कलेश पया सुख साचा, हर हर नाम संभाली, जियो जिसके से तिन्ह प्रत पारी, पार ब्रह्म प्रभु कहे रखवारी, सुनी बेनंती ठाकुर मेरा, पुन हुई काली, जियो सर्व जिया को देवन हारा, गुरु प्रसाद नदर निहारा, जाल थाल महिर सब तृप्तानी, साधु चरण पकाली, जियो मान की इच्छ पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलहारा, नानक दान किया दुख पंजन रति रंग रसाली, जियो माज महला पंजवा, मान तन तेरा तान भी तेरा, तुम ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब राह तुम्हारी।

लिप ना सके कोई हुक्म वरत अमृत बाणी। हुक्मे अमृत पिया गुणिया अजब काम करती हर पीरी मन भूला जांदा फीरी। अमृत बाणी सियों जित लाई अमृत शब्द बजावणिया कोटि खरी तुदया पियो पाय तुदया पी पर की रूख सुबाई खरी पर खजाना पाई ही कोटि परम पुलावणिया क्यों कर वीखा क्यों सारा ही गुरु प्रसाद शब्द सलाही। तेरे पाणी विच अमृत वसै तू पाणे अमृत पिया गुणिया अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सीवै अरदास बाणी नानक अमृत नाम सदा सुखदाता पी अमृत सब भूख लह जावणिया बाज महला तीजा। अमृत वरसै सहज सुभाई गुरमुख बिरलै कोई जन पाई अमृत पी सदा तृपता सी कर कृपा तृष्णा बुझावणिया हवारी जीव वारी। गुरमुख अमृत पियावणिया रसना रस चाक सदा रह रंग राती सहज हर गुण गावणिया रह। गुरु प्रसाद सहज को पाए दोदा मारी एक सस्यों लिव लाई नदर करे ता हर गुण गावै नदी सच समावणिया सबना उपर नदर प्रभु तेरी किसै थोड़ी किसै है कनेरी। पूजते बाहर कृष्णा हुए गुरमुख सोजी पावनिया गुरमुख तात है विचार अमृत परे तेरी भंडारा बिन सतगुर सीवे कोई ना पावे गुर कृपा ते पावनिया सतगुर सीवे सो जन सो है अमृत नाम अंतर मन मोह अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुनावनिया मन भूला दूजे पाई खुआई। नाम ना दीवा मर विखाय अंतन सदा विष्टा मह वासा बिन सीवा जन्म गवावणिया अमृत पीवा जिसना पियाय गुरु प्रसाद सहज लिवलाय पूर्ण पूरहि असव्यापि गुरमत नदरी आवणिया। आपी आप निरंजन सोई जिन सिर जीत नापि गोई नानक नाम संभाल सदा तू सहज सच समावणिया बाज महला तीजा। सी सच लागी जूत उदपाय सदा सच सीवा सहज सुभाय सचा सब सचा सालाही। सचा मील मिलावणिया हवारी जियो वारी सच सालाहणिया सच दियायन सी सच राति सचि सच समावणिया रहाउ जह दीखा सच सबनी थाई गुरु प्रसादि मन वसाई। तान सचा रसना सच राति सच सुनाक वखाणिया मन समार सच समाणी एन मन डीठी सजावण जाण सतगुर सीवे सदा मन रिह चलन रिज कर वासा पावणिया। गुर के शब्द हृदय दिखाया माया मूह शब्द जलाया सचु सचा वीख सारा ही गुर शब्द सच पावणिया। जू सच राती दिन सची लिवलागी हर नाम सुमारे सिवट पागी।

कुंडी माया मुख चुकाय शब्द नृत करावनिया ऊंचा कुके तनह पछाड़ी माया मुहि जुहिया जमकाली माया मुस मनहन चाय अंतर कपट दुखावनिया गुरमुख पग जया कुकराई तान मन रहता सहित सुबाई।

ते मन भावन। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन, जो प्रभु कीते अपने से ही कहिए धन, अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन।

सुहा सुहा गए से गीत पुकारीता उड़िया हंस दसाहेरा आया गया मोया नाव पिछे पत्तल सदयो काव नानक मन मुख अंध प्यार बाज गुरु डुबा संसार। महला पहला। दस बाल तन वी सरवण तीसा का सुंदर कहावे चालीसी पुर होए पचासी पग खिसे सठी के बुढ़े पायावे सत्तर का मत हीन असिया का व्यवहार न पावे नवे का से जासनी मूल न जाने अपवल तंडोलिम टूंडिम डिठ में नानक जग तूए का तबल हर पौड़ी तू करता पुरख अगम है आप श्रेष्ठ उपाति रंग परंग उपार्जना बौ बौ बिद पाती तू जाने जिन उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे एक जाए उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विधाती तू आपे आप सो जाने बड पुरख वडाती जो मन चित तुद ध्याए दे मेरे सचिया बल बल हो तिन जाती। श्लोक महला पहला। जियो पाए तन साजिया रखिया बणत बनाए अखी देखे जेवा बोले कन्नी सुरत समाए पैरी चले हथी करना दिता पैने खाए जिन रच रचिया तिसे न जाने अंधा अंध कमाए जा भजै ता ठीकर होवे घाटत घड़ी न जाए नान गुरबिन नाही पात

खुदाए का दिल हछे मुख ले हो अबर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे हो। महला पहला जा हो नाही ता क्या आखा क्यों नाही क्या होवा कीता करना कहया कथना भरिया पर धोवा पर।

लश्कर करे सोआ, जेते जी जी वै लै साह, जी वाले ताके असा। नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावै, त्यों त्यों दे गरा। महला पहला। एक मास हारी एक तृण खाए, एक ना छद्दी अमृत पाए। एक मिटियां मैं मिटियां खाए, एक पौण सुमारी पौण सुमार। एक निरंकारी नाम आधार, जीवै दाता मरे न कोय। नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पावड़ी। पूरे गुर की कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम त्याई है। दूजी कार लाग जन्म गवाई है, बिन नामे सब बिस पै जय खाई है। सच्चा शब्द सलाहे सच सुमाई है, बिन सतगुर सेवै नाही सुख। निवास फिर फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूड कमाई है। नानक सच खरा सा लाए, पत स्यों जाई है। श्लोक महला पहला। तुद भावै तां वावै गावै, तुद भावै जल नावै। जा तुद भावै तां करे विभूता, सिंघी नाद वजावै। जा तुद भावै तां पढ़े कतेवा, मुला से कहावै। जा तुद भावै तां होवै राजे, रस कस बहुत कमावै।

संग साज बिहाग तक है आगास दह दिस्ताव है कर्म लिखयास नाम संजोगी गोयल थाट काम गुरुद फूटे बिख माट बिन।

अपनमान कई जन्म कहे पाए कई पतंगा कई जन्म कर मीन करंगा कई जन्म पंखी सर्प हुयो कई जन्म है बिखमजो हुयो दिल जगदीश मिलन की बरिया चरंकल देश दरिया।

गौड़ी मोहल्ला पंजवां सूखे हरे की खनमाह आमृत दृष्टन दिवाय काटे काट पूरे गुरदेव सेवक को देनी अपनी सेव राम मिड़की चिंतपुरी मन आसा करी दया सदगुणता सा दुख नाठे सुबह समाये ढील न करी।

भय। प्राव रूप नारेखं जोगी को कैसा डर होए रूप बिरख ग्रह बाहर सोए रहाव निरपो जोगी निरंजन त्यावै अन दिन जागै सच दिव लावै सो जोगी मेरा मन भावै काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्भ निवारे आप करै पितरी निस्तारे साधु सेवि सो जोगी होए पैर अच रहै सो निरपो होए जैसा सेवै तैसो होए नर ने केवल निरपो नाओ नाथे नाथ करी बल जाओ पुनर्भ जन्म नाही गुणगाओ अंतर बार एको जाना गुर का शब्द आप छाना साचा शब्द तारनी साना शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै न जावै चूकै आसा गुर का शब्द कमल प्रगासा जो दिसै सुवास निरासा काम क्रोध भिक्खु प्यासा नानक दिरले मिले उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सासोई दर्शन देख भई मत पूरी अठसन मजन करना धूरी रहाव नेत्र संतोखे लिव तारा जेहवा सूची हर रा सारा सच करनी अभ्यंतर सेवा मन तृप्तास्या लख भेवा जा जा देखो तै तै साचा बिन बूझे झगत जा काचा गुर समझावै सो जी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा रखो रखवाले बिन बूझे पशु भय बिताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हित प्रभु त्रिभवन धारी आत्म कीना सो तत् विचारै साजदा सच प्रेम निवास प्रणत नानक हम ताके दास गौड़ी महला पहला ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जय प्रभु सुरेत्या मन मानिया ऐसा गर्भ पुरा संसार है जिस गुर मिलै तिस गर्भ निवार रहाओ बल राजा माया अहंकारी जगन करै बुपार पारी बिन गुर पूछा जाए प्यारी हरि चांद दान करै जस देवै बिन गुर अंत ना पाए भेवै आप भुलाए आपे मत देवै दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद उधारे कृपा धारी भूलो रावण मुद चेत लूटी लंका शीस समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बहु मद कीट मै खासा हरनाक्ष दे नफ बिदासा दैत संघारे बिन जगत अभ्यासा जरा सन काल जमन संघारे रक्त बीज काल विधारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सबद शब्द विचारे दूजै भाए दैत संघारे गुरमु साच भक्त निस्तारी बूढ़ा दुर्योधन पत कोई राम ना जानिया करता सोई जान को दुख पचै दुख होई जन मेजा गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावै भरम भुलान्या तिल भूले बौर पछतान्या कंस कीर्तन दूर न कोई राम ना चीनिया अपनी पत कोई बिन जगदीश ना राखै कोई बिन गुर गर्भ ना मिटिया जाए गुरमत धर्म धीज हर नाए नानक नाम लै गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ाओ पाल पटंबर पैर हटाओ बिन हर नाम कहाँ सुख पाओ क्या पहरो क्या ओट दिखाओ बिन जगदीश का सुख पाओ रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहा सुख भाला नैन सलोनी सुंदर नारी कोड़ सिगार करैत प्यारी बिन जगदीश भजे नित पारी दर कर मैला से सुखाली ऐन सुफूल बिछावै माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लश्कर नेज कवासी पाजे बिन जगदीश झूठा दे वाजे सिद्ध कहाओ रिद सिद्ध बुलाओ ताज कुलहे जिल सिर शत्र बनाओ बिन जगदीश का सच पाओ खान मलू कहाओ राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुरु शब्द ना सबर सकाजा हमे ममता गुर शब्द विसारी गुरमुख माने हृदय मुरारी प्रणत नान सरण कुमारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान से अवरी परपंच ब्याद त्यागै कवरे भाई मिलै सा साचै सच रिया सा राम भक्त जन होई हर गुण गाय मिलै मल धोई रहा उन्दो कवल सगल संसारै दुर्मत अगन जगत पर जा रै सो उबरै गुर शब्द विचारै भृंग पतंग कुंचर अरमीना मिर्ग मरै सह अपना कीना तिसना राज तत् नहीं बीना काम चितै कामन हितकारी क्रोध विनाशै सगल विकारी पत मत को वह नाम सारी पर घर कीत मन मुखडोलाए गल जीवरी धंधै लपटाए गुरमुख सूरस हर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर कौ देई काम दाम चित पर वस सेई बिन फिर तृप्त न कबू होई पट पट पोथी सिमत पाठा वेद पुराण पढ़ै सुठाठा बिन रस माते मन बहु नाटा ज्यों चातक चल प्रेम प्यासा
ਜੋ ਮੀਨਾ ਜਲ ਮਾਹੇ ਉਲਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਅਸਤੀ ਤਿਪਤਾਸਾ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹੱਠ ਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪਵਾ, ਵੇਸ ਪਰੈ ਬਹੁ ਖਸਮ ਲਗਾਵੈ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੈ, ਤੂੰ ਮਨ ਹਰ ਜੀਉ ਤੂੰ ਮਨ ਸੁਖ, ਨਾਮ ਸਾਰ ਸਹੇ ਜਮ ਦੂਖ ਰਹਾਉ, ਚੋਵਾ ਚੰਦਨ ਅਗਰ ਕਪੂਰ, ਮਾਇਆ ਮਗਰਮ ਪਰਮ ਪਦ ਦੂਰ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸਭ ਕੂੜੋ ਕੂਰ, ਨੀਜੇ ਵਾਜੇ ਤਖ਼ਤ ਸਲਾਮ, ਅਦਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕਾਮ, ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਚੇ ਭਗਤ ਨਾ ਨਾਮ, ਆਵਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ, ਮਨ ਦੇ